ज्यो ज्यो चले छुपै दुख पावे, जम काल सहस डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मन पव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया।

समस्तल सलाम है सदा भला काम है निर्बाध स्वरूप है गार है नूप है ओंगाद रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रे भुगता स्वरूप है छिद है शूद है कि नरकं वरणास है प्रतील प्रवास है

चरण धूड़ ते जन की होवा तेरे दर्शन कौ भल जाई। अमृत बचर दौर धारी तो कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुद पहसारी तुद जेवड़ अब न कोई। जिसनो लाए लह सो लागे भगत तुहारा सोई। दो कर जोड़ मांगो इक दाना साहेब तुठै पावा। सास सास नानक आरा दे आठ पहर गुण गावा। सूही महला पंजवा जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै। बोलना जाना माया मद माता मरना चीत न आवै। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे तेरे सेवको पाओ किछु नाही जम नहीं आवै नेरे रहाओ। जो तेरा रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श न मेटै कोई सतगुर का दिलासा। नाम त्यायन सुख फल पायन आठ पहर आराधे। तेरी शरण तेरा भरवास है पंच दुसला साधे। ज्ञान ध्यान किछु कर्म न जाना सार न जाना। तेरी सबते वड्डा सतगुर नानक जिनकल राखी मेरी। सूही महला पंजवा सगल त्याग गुर सरणी आया। राख हो राख नहारे जित तू लावे तित हम लागे। क्या एह जंत बेचारे मेरे राम जी तू प्रभ अंतर जामी। कर कृपा गुरदेव दयाला गुण गावा नित स्वामी रहाओ। आठ पह प्रभ अपना त्याया गुर प्रसाद पाओ तरिया। आप त्याग होइया सवरेणा जीव त्या यो मरिया। सफल जन्म तिसका जग पीतर सा संग नाव जापे। सगम मनोरथ तिसके पूर्ण जिस दया करे प्रभ आपे। दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला। कर कृपा अपना नाम दीजै नानक सादर वाला। राग सूही अष्टपदिया महला पहला। कर पहला एक ओ अहंकार सतगुर प्रसाद। सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मिलावा होई। ना मैं रूप न बंके नैना ना कुल ढंग न मीठे बहना रहाओ। सहज सिगार कामण करे आवै ता सोहागण जंकंत भावै। ना तिस रूप न रेख्या काई अंत न साहेब सिमरिया जाई। सुरत मत नाही चतुराई कर कृपा पवलाभ हो पाई। खरी सियाणी कंत न पाणी माया लागी भर में भुलाणी। हो मैं जाई तकंत समाई तो कावण प्यारे नव निध पाई। अनक जन्म बिशरत दुख पाया कर गे ले हो प्रीतम प्रभ राया। भणित नानक सो है पी होसी जै पावै प्यारा तै रावे सी। सूही महला पहला। कर नावा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। कच्चा रंग सुंभ का थोड़िया दिन चार जियो। बिन नावै भ्रम भुलिया ठग मुठी कूड़े आर जियो। सच्चे सीती रत्या जन्म न दूजी वार जियो। रंगे का क्या रंगी है जो रत्ते रंग लाए जियो। रंगण वाला सेवी है सच्चे स्यों चित लाए जियो। रहाओ चारे कुंडा जे पवे बिन भागा तन नाहे जियो। अवगण मुठी जे फिरे बदिक थाए न पाहे जियो। गुर राखे से उबरे शब्द रते मन माहे जियो। चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित कठोर जियो। तिन मुखे नाम न उपजै दूजै व्यापे चोर जियो। मूल न बूझे अपना से पसुआ से ढोर जियो। नित नित खुशिया मन करे नित नित मंगै सुख जियो। करता चितना आवई फिर लगे दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसै तित तन कैसी भुख जियो। बाकी वाला तलबिया सिर मारे जंदार जियो। लेखा मंगै देवना पुछै कर विचार जियो। सच्चे की लेव उबरै बक्से बक्सनहार जियो। अनको की जै मित्रा खाक रलै मर जाए जियो। बहुरंग देख भुलाया भुल भुलयावै जाए जियो। नद प्रभु ते छुट्टिया नदरी मेल मिलाए जियो। गाफल ज्ञान वे हूणिया गुर बिन ज्ञान न पाल जियो। खिंचो तान वे गुच्चिया बुरा भला दोए नाल जियो। बिन शब्द पैर त्या सब जो ही जमकाल जियो। जिन कर कारण धारिया सब सह दे आधार जियो। सोक्य मन हो विसारी है सदा सदा दातार जियो। नानक नाम न विसरै निधारा आधार जियो। सूही महला पहला। काफी कर दसवा एक ओ अहंकार सतगुर प्रसाद। मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया मन तन होए चुलंब। जे सतगुर पाया चलै जन्म सवार वखुर सचुलै पत पाए दरबार। सतगुर शब्द पै रहाओ मन तन सचु सलाहे। साचे मन पाया लाल रता मन मान्या गुर पूरा पाया। हों जीवा गुण सारे अंतरे तू वसै तू वसै मन माहे। सहज रस रसै मूर्ख मन समझाए आखो केतड़ा। गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगेतड़ा। नित नित हृदय समाल प्रीतम अपना। जे चलहे गुण नाल नाही दुख संतापना। मन मुख भरम भुलाना ना तिस रंग है मरसी।

नदरी आया, जल थल महियल पूर्ण स्वामी, घट घट रहिया समाया। जिस ते उपजया तिस माहे समाया, कीमत कहन न जाए, जिसके चल न जाही लखणे, नानक तिस हित आए। राग सूही छंत महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गोबिंद गुण गावण लागे, हरंग अंदर जागे, हरंग जागे पाप पागे, मिले संत प्यारिया, गुरचरण लागे परम पागे, काज सगल सवारिया। सुन श्रवण बाणी सहज जानी, हर नाम जप वट भागै, बिनवंत नानक सरण स्वामी, जियो पिंड प्रभ आगै। अनहद सबद सुहावा, सच मंगल ह जस गावा, गुण गाए हर है दुख नासे, रहस उपजै मन कणा, मन तन निर्मल देख, दर्शन नाम प्रभ का मुख पणा। होय रेण साधु प्रभ आराधु, अपने प्रभावा, बिनवंत नानक दया धारो धारो, सदा हर गुण गावा। गुरमिर सागर तरिया, हर चरण जपत निस्तरिया, हर चरण ध्याए सब फल पाए, मिटे आवण जाना पाए, भगत सुपाए, हर जप अपने प्रभावा। जप एक अलख अपार पूर्ण, तिस बिना नहीं कोई, बिनवंत नानक गुर परम खोया, जत देखा तत सोई। पतित पावन हर नामा, पूर्ण संत जना के कामा, गुर संत पाया प्रभ त्याया, सगल इच्छा पुनिया, हों ताप बिनसे सदा सरसे, पर मिले चिरी विछुनिया। मन सांत आई वजी वधाई, मनहो कदे न विसरै, बिनवंत नानक सतगुर दृढ़ाया, सदा पज जग दीसरै। राग सूही छंत महला पंजवा, घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तू ठाकरो बैरागरो, मैं जेही कंचेरी राम, तू सागरो रतनागरो, हो साना जाना तेरी राम, साना जाना तू वरदाना, कर मेहरमत साई, कृपा की जय समत दीजै, अट बह तुधियाई, गर्व न की जय रेण हो विजय, तागत जी रे तेरी, सब ऊपर नानका ठाकुर, मैं जेही कंचेरी राम, तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम पिर हम बहुरिया राम, तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे हो, इतनी कलहुरिया राम, हम किश नाही एको, तू है आपे आप सो जाना, अमृत दृश निमख प्रभ जीवा, सर्व रंग रसमाना। चरण हे सन्नी दास हे दासी, मन मोला तन हरिया, नानक ठाकुर सर्व समाणा, अपन पावन करिया, तू जो ऊपर मेरा है माणा, तू है मेरा ताना राम, सुरत मत चतुराई तेरी, तू जाना हे जाना राम, सोई जाना सोई पछाणा, जाको नद सिरिंदे, मन मख भूली बहुती फाही, मन मख भूली बहुती राही, फाती माया फंदे, ठाकुर पानी सा गुणवंती, तिन ही सब रंग माणा, नानक की धर तू है ठाकुर, तू नानक का माणा, हों वारी वन्या कोली वन्या, तू पर्वत मेला ओला राम, हों बल जाई लख लख लख वरिया, जिन परम परदा खोला राम, मिटे अंधारे तजे बेकारे, ठाकर सिंह मनमाना, प्रभ जी पाणी पई निकानी, सफल जन्म परवाना, पई अमोली पारा तोली, मुक्त जुगत दर खुला, कहो नानक कहो निरपो होई, सो पर मेरा ओला। सूही महला पंजवा, साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा, तिस बिन अब ना जाना राम, मात पिता पाई सुत बंत पर जी, प्राण मन पाना राम, जियो पिंड सब तिसका दिया, सर्व गुणा पर पूरे, अंतर जमी सो प्रभ मेरा, सब रहया पर पूरे, ताकि सरण सर्व सुख पाए, होए सर्व कल्याणा, सदा सदा प्रभ को बलिहार है, नानक सतगुर बाणा, ऐसा गुर बड़ भागी पाई है, जित मिलिया प्रभ जापै राम, जन्म जन के किल विख उतरे, है संत धूड़ी नित नापै राम, हा धूड़ी नाई है प्रभुति आई है, बौहड़े जुन न आई है, गुरचरणी लागे परम पौ पागे, मन चिंदिया फल पाई है, हर गुण नित गाए नाम त्याए, फिर सो गुण नाही संताप है, नानक सो प्रभ जी का दाता जिस पूरा, नानक सो प्रभु जी का दाता पूरा जिस प्रताप है, हर हरे हर गुण दे, हर संतन कै बसाए राम, संत चरण गुर सेवा लागे, तिनी परम पद पाए राम, परम पद पाया आप मिटाया, हर पूर्ण कृपा तारी, सफल जन्म हुआ पाओ पागा, हर भेटिया एक मुरारी, जिसका साथ तिन्ही मेल लिया, ज्योति ज्योत समाया, नानक नाम निरंजन जपिया, मेरे सतगुर सुख पाया, गाओ मंगलो नित हजन पुन्हो, जन्हो पुनी इच सवाही राम, रंग रते अपने स्वामी से, तीमर न आवे जाही राम, अवनासी पाया नाम ते आया, सगम नोर्थ पाए, सांत सहज आनंद कनेरे, गुरचरनी मन लाए, पूर रहिया कट कट अवनासी, थां थन अंतर साई, कोह नानक कारज सगले पूरे, गुरचरनी मन लाई। सूही महला पंजवा,
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਆਮੀ ਨੇਤਰ ਦੇਖੇ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਲਾਖ ਜੇਵਾ ਦੇਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਖ ਆਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ।

करे का खालसा आकी रह न कोई खुवार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए खुवार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए बोले सोनिहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा।

सद गाइए प्रभ के रंगे राम, सो प्रभ सद ही सेविए पाइए फल मंगे राम। नानक प्रभ शरणागति जप अनत तरंगे राम, एक तिल प्रभु ना विसरे जिन सब कुछ।

अपदेश गोर सोन मन्या तोर मस्तक पूरा पाग सब दिन सरैन गुण उच्चरे हर हर हर उर लिब लाग सब तन मन।

गुरुदेव गौंड महला पंजवा संत का लिया धरत बिदारो संत का निंदक आकाश ते टारो संत को राखो अपने जी नाल संत उधारो तख्त खिण ताल सोई संत जे भावै राम संत गोविंद कै इकै काम रहाओ संत के ऊपर दे प्रव हाथ संत के संग बसै दिन रात सास सास संत है प्रतपाल अंत का दुखी राय ते टाल संत की निंदा करहो कोय जे निंदे तिस का पतन होए जिस को राखे सिरजनहार चख मारो सगल संसार प्रभ अपने का पया विसास जियो पिंड सब तिसकी रास नानक को उपजी प्रतीत मन मुख हार गुरमुख सद जीत गौंड महला पंजवा नाम निरंजन नीर नारायण रसना सिमरत पाप बिलायण रहाओ नारायण सब महे निवास नारायण घट घट प्रगास नारायण कहते नरक न जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे नारायण मन महे आधार नारायण बोहित संसार नारायण कहत जम भाग पलायण नारायण दंत भाने डायण नारायण सद साधव सिंध नारायण कीने सुख आनंद नारायण प्रगट कीनो प्रताप नारायण संत को माई बाप नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायण बारंबार नारायण गायण बस्त गोचर गुर मिल लही।

है। छोड़े अन्न करै पखंड, ना सुहागिण ना ओहै रंड। जग में भगतै दूधा धारी, गुप्ति खावै वटका सारी। अन्ने बिना न हुए सो काल, तजै अन्न न मिले गोपाल। कहो कबीर हम ऐसे जानिया, तन अनाद ठाकुर मन मानिया। राग गोंड बाणी नाम देओ जी की कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, असमेद जगने तुला पुरख दानै। प्राग इशनानै तौ ना पूजै, हर कीर्तनामा।

जैसे गाय का बासा सूट लाव थन चोख ताव माखन कूट ला नाम देव नारायण पाया गुरु भेटत अलख लखाया जैसे बिखे हेत पर नारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी।

सुआ पड़ावत गणकातरी सो हर नैनो की पूतरी हर हर करता पूतना तरी बाल कातनी कपट परही सिमरन द्रोपता सुत उदरी गौतम सती सिला निस्तरी

थी। हिंदू अन्ना तुर्क काणा दोहां ते ज्ञानी सयाणा हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीता नामे सोई सेव्या जह देहुरा नाम सीत रागोंड बाणी रविदास जीयो की कहर दूजा एका ओंकार सतगुर प्रसाद।

की गोंड आव जे ओहे अठ सठ तीर्थ नहावै जे ओहे दुआ दस सिला पूजावै जे ओहे कूप तटा दिवावै करे निंद सब बिरथा जावै साध का निंदक कैसे तरै सर पर जन हो नरक ही परै रहाव जे ओह ग्रह नव करे कुल खेत आव अर्पे नार शिंगार समेत सर्वणी सिमरता सर्वणी सगली सिमरता सर्वणी सुनय करे निंदव कमनय नहीं गुनय

तिसे त्याना अब ही कब ही किसु न जाना तेरा एको नाम पछाना न जाना हरे मेरी कमन गते हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ।

राम कली महला पहला सुरती सुरत रलाइए एत तन कर तुलहाव लंघ जेत अंतर पाहे तिसै तू राखव अहनस दीवा बल आकत ऐसा दीवा नीर तराय जित दीवा सब सूजी पाए रहाओ हसी मिटी सूजी होए ताका किया मन सोए करनी ते कार चकहो टहालो ऐथे ओत निबहि नालो आपे नदर करे जां सोए गुरमुख विरला बूझे कोए तेत

सिंहासन लोए। खत्री ब्राह्मण सूद के वै सौ निरत न पाए गणी सहंसा। ऐसा दीवा बाले कोए नानक सो पारंगत होए। राम कली महला पहला।

तू सागर हम हंस तुम्हारे, तुम मह माणक लाला, तुम देव हो तिल शंख ना मान हो, हम पुंच हो सदा निहाला, हम बारिक तुम पिता हमारे, तुम मुख देव हो खीरा, हम खिल है सब लाड लड़ाव है, तुम सदगुणी गहीरा, तुम पूरन पूर रहे संपूरन, हम पही संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहा, नानक कहन न जाए, राम कली महला पंजवा, कर कर ताल पखाव जनन हो, माथ वजह रबाबा, करन हो मद बासुरी बाजै, जेहवा तुनिया गाजा, नृत करे कर मनुआ नाचै, आने कुगर साजा, राम को नृत्यकारी, पेख पेखन हार दयाला, जेता साज सी गारी रहाओ, आखार मंडली तरन सबाई, ऊपर गगन चंदवा, पवन विचोला करते केला, जलते ओपत होआ, पंच तत् कर पुत्रा कीना, किरत मिलावा होआ, चंद सूरज द्वे जरे चरागा, चौह कुंट पीतर राखे, दस पाताओ पंच संगीता, एक पीतर साथे, भिन्न भिन्न होए भाव दिखावे, सभो निरारी पाखे, कर कर निरत होवै दिन राती, घट घट वाजै तूरा, एक नचावह एक पवावह, एक आए जाए होए तूरा, कहो नानक सो बहर ना नाचै, जिस गुर भिट पूरा, राम कली महला पंजवा, ओंकार एक तुन एकै, एकै लागै लापै, एका देसी एक दिखावै, एको रहया ब्यापै, एका सुरत एका ही सेवा, एको गुरते जापै, पलो पलो रे कीर्तनिया, राम रमा रामा गुण गाओ, छोड़ माया के तंद सुआ रहाओ, पंच बजित्र करे।

कीरी जात जीतौ सगला भवन बेअंत महिमा ताकि केतक बरन बल बल जाइय ताके चरण। तिन्ही किया जप तप ज्ञान ध्यान अनेक प्रकार किया तिन दान भगत सोई कल वह पूर बरवान ताको ठाकुर दिया मान। साध संग मिल पय प्रगास सहज सुख आस निवास पूरे सतगुर दिया विसास नानक होए दासन दास राम कली महला पंजवा। दोस ना दीजै काहू लोग जो कमावन सोई भोग आपन कर्म आप ही बंद आवन जावन माया तंद।

संग नाही रहे सगल पसारे सोग हरख मह देह बिरधानी साकत भी करत बिहानी हर का नाम अमृत कल माहे एहो निदाना साधु पाहे नानक गुर गोविंद जस जिस तूठा कट कट रमैया तनही डीठा राम कली महला पंजवा पंच शबद तह पूरन नाद अनहद बाजे अचरज बिसमाद केल करह संत हर लोग पार ब्रह्म पूरन रजोग सुख सहजानंद भवन साध संग बैस गुण गावहै तह रोग सोग नहीं जन्म मरन रहाओ ऊहा सिमरह केवल नाम बिरले पावहै ओहो विश्राम भोजन भाओ कीर्तन आधार ने चले आसन बेसुमार डेग न डोलै कतहु न तहवै गुर प्रसाद को एहो महर पावै भ्रम पै मोह न माया जाल सुन समाध प्रभु कृपाल ताक अंत न पारावार आपे गुप्त आपे पासार जाके अंतर हर हर स्वाद कहन न जाई अचर नानक विसमाद राम कली महला पंजवा भेटत संग पार ब्रह्म चित आया संगत करत संतोख मन पाया संत है चरण माथा मेरो पौत अनेक पार संत है डंडौत एहो मन संतन कै बलिहारे जाकी उठ गही सुख पाया राखे कृपा धारी रहाओ संत है चरण तोए तोए पीवा संत है दर्श पेख पेख जीवा संत है की मेरा मन आस संत हमारी निर्मल रास संत हमारा राख्या पड़दा संत प्रसाद मोहे कबहू ना करदा संत है संग दिया कृपाल संत सहाय पहे दयाल सुरत मत बुद्ध प्रगास गहर गंभीर अपार गुणतास जी अजंत सगले प्रतपाल नानक संत है देख निहाल राम कली महला पंजवा

लाज रहै। हर सिमरत जम कछ न कहै रहाउ, बिन हर सगल निरार्थ काम, सोयना रूपा माटी धाम। गुर का शब्द जाप मन सुखा, इहा उहा तेरो उजर मुखा। कर कर थाके वडे वडेरे, के नहीं ना किए काज माया पूरे।

निर्मला जो वरताए सोई भला जह राखाए सोई मुक्त थान जो जपाए सोई नाम आठसठ तीरथ जह साध पग तरहै तह बैकुंठ जह नाम उचरहै सर्व आनंद जब दर्शन पाइय राम गुणा नित नित हर गाइय आपे घट घट रहया व्याप दयाल पुरख प्रगट प्रताप कपट खुलाने प्रम नाठे दूरे नानक कौ गुर फेटे पूरे राम कली महला पंजवा कोट जाप ता विश्राम रिद बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनेक रूप रोग अनेक रूप रंग भोग रसाए गुरमुख नाम निमख हृदय वसै हर के नाम की वडियाए कीमत कहण न जाय रहाओ सूर बीर तीरज मत पूरा सहज समाद तुन गहर गंभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जाकर हृदय वसै हर नाम सगल सुख आनंद अरोग समदर्शी पूर्ण।

पंडित कर्म काट अहंकार न काजै कुशल सेती घर जाहे पंडित रहाओ हर का जस निध लिया लाभ पूर्ण पय मनोरथ साहब दुख नाठा सुख कर्म है आया संत प्रसाद कमल बिकसाया नाम रतन जिन पाया दान तिस जन होए सगल निधान संतोख आया मन पूरा पाए फिर मांगन काहे जाए हर की कथा सुनत पवित जेहवा बकत पाई गत मत सो प्रवान जिस हृदय बसाई नानक तेजन उत्तम पाए राम कली महला पंजवा गहो कर पकरी न आई हाथ प्रीत करी चाली नहीं साथ कहो नानक जौ त्याग दई तब ओह चरणी आए पई सुन संत हो निर्मल विचार राम ना बिन गत नहीं काई गुर पूरा भेटत उदार रहाओ जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गुमान जब उसका कोई मन पर हरै तब ओह सेवक सेवा करै मुख बेरावै अंत ठगावै एक ठाउर ओह कही न समावै उन मोहे बहुते ब्रह्मांड राम जनी कीनी खांडे खांड जो मांगे सो पुखा रह इस संग राचे सो कछ ना कछु नल है इस है त्याग सत्संगत करै वड़ भागी नानको हो तरै राम करी महला पंजवा आत्म राम सर्व है पेख पूरन पूर रहया प्रभ एक रतने मोल हृदय मह जान अपनी वस्तु तू आप पछान पी अमृत संतन प्रसाद वडे भागो वह तो पाई है बिन जेवा क्या जाने स्वाद रहाओ अठ दस बेद सुने कह डोरा कोट प्रगास न दिस अंधेरा पशु प्रीत कास संग रचै जिस नहीं बुझावै सो केत बिद बुझाए जानन हर रहया प्रभ जान ओत पोत भगतन संगान बिगस बिगस अपना प्रभ गाव है नानक तिन जम नेड़ न आव है राम करी महला पंजवा दीनो नाम कियो पवित हर तन रास निरास एहो बित काटी बंद हर सेवा लाए हर हर भगत राम गुण गाए बाजे अनहद बाजा रस करस गुण गाव है हर जन अपने गुरदेव ने बाज रहाओ आए बनयो पूर्वला भाग जन्म जन्म का सोया जाग गई गिलान साध कै संग मंतन रातो हर कै रंग राखे राख हार दयाल ना किछ सेवा ना किछ काल कर कृपा प्रभ कीनी दया बूढ़त दुख मह काढ़ लिया सुन सुन उपजो मन मह चाओ आठ पैर हर के गुण गाओ गावत गावत परम गत पाई गुर प्रसाद नानक ले बलाई राम करी महला पंजवा कौडी बदलै त्यागै रतन छोड़ जाए ताहू का जतन सो संचय जो होछी बात माया मोहया टेढ़ो जात अभागे तै लाज नाही सुख सागर पूर्ण परमेसर हर ना चेत्यो मन माही रहाओ अमृत कौरा बिख्या मीठी साकत की बिद नैनो डीठी कूड़ कपट अहंकार री जाना नाम सुनत जन बिछू डसाना माया कारण सद ही चूर है मन मुख कबह न उस्तत करै।

ले अचरज पुरख त्याओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनस सगल संताप। भैरी सब होवह मीत निर्मल तेरा होवह चीत सब ते उत्तम एहो कर्म सगल धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होय उधार जन्म जन्म का उतरै भार पूरन तेरी होवै आस जम की कटिया तेरी फास गुर का उपदेश सुनीजै नानक सुख सहज समीजै राम कली महला पांजवा। जिस की तिस की करमान आपन लाहे गुमान जिसका तू तिसका सब कोय तिस आराध सदा सुखोय काहे प्राम प्रमह बिगाने ना बिना किस काम न आवै मेरा मेरा कर बहुत पछता निरहाओ।

अगोचर आप आठ पहर मन का मनता कहो जाप जिस चित आए बिन सह दुखा हलत पल तेरी तेरा उजर मुखा कौन कौन उदरे गुण गाए गण न जाय कीम न पाए बूढ़त लोह सार संगत राय नानक जिस प्राप्त कराए राम कली महला पंजवा मन माहे जाप भगवंत गुरपूरा एहो दीनो मंत मिटे सगल पै त्रास।

प्रभु का सिमरन दरगह मानी, प्रभु का सिमरन होए सो फला, प्रभु का सिमरन सुफल फला, से सिमरे जिने आप सिमराए, नानक ता कै लागो पाए। प्रभु का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभु का सिमरन उदरे मूचा, प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभु का सिमरन सब किश सुझै। प्रभु का सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु का सिमरन पूरन आसा, प्रभु का सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहे समाए। प्रभु जी बसहे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरै से तनवंते, प्रभु को सिमरै से पतवंते। प्रभु को सिमरै से जन परवान, प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरै से सर्ब के राजे।

जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन सांकेते तरे पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत निद वसै संत प्रताप दुर्त सब नसे संत का संग वड भागी पाई है संत की से

कह बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान सा संग जाका मिटे अभिमान आप सको जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊंचा जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेख सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन सम दृष्टिता

ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंगबुत आगत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।

टहल संत संग हेत करना सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद बिखिया प्रहर मन की बासना मन ते टरै इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मदे को वैसा परस बैसनो सो जिस उपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए पिन कर्म करत हो वै ने कर्म तिस बैसनो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाशै केवल भगत कीर्तन संग राचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब उपर होवत कृपाल आप दृढ़ बरे नाम जपावै नानको बैसनो परमगत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग

कई कोट दर्शन प्राप्यास तिन को मिलियो प्रभ विनाश कई कोट मांगे सतसंग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन को होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अर खंड कई कोट काश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जुगत कीनो विस्थार कई बार पसरे उपासार सदा सदा एक अंकार कई कोट कीने बोपात

संत का दोखी जन्म मरे, संत की दुख न सुख ते टरे, संत के दोखी को नाही ठाओ, नानक संत पावेता लय मिलाए। संत का दोखी अद बीच ते टूटे, संत का दोखी किते काज ना पहुंचे, संत के दोखी को ध्यान परमाइए, संत का दोखी उजड़ पाई है।

जैसा कि श्रेष्ठ सो करने हार वरना बूझ करत विचार करते कि मित न जाने की या नानक जो तिस पावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भय बिस्मा जिन बूझिया तिसाया स्वाद प्रभ के रंग राच जन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे ओहे दाते दो काटन हार जा कै संग तरह संसार जन का सेवक सोवट भागी जन कै

का सेवक नाम करं। सेवको प्रपालन हारा सेवकी राखे निरंकारा, सो सेवक जस दया प्रवतारे, नानक सो सेवक सा सास मारे। अपने जन का परदा टाके, अपने सेवक की सर पर राखे, अपने दास को देव डाई, अपने सेवक को नाम जपाई।

जिन जन अपना प्रभु पिछाता सो जन सर्ब थोक का दाता तिसकी शरण सर्ब सुख पावै तिसकै दरसा पाप मिटावै अवर सियानप सगली शाड तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाउ तिसकै संग सिखी उदरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी।

गमन मिटै प्रभ सेव। आप त्याग शरण गुरुदेव, इउं रतन जन्म का हुए उदार। हर हर सिमर प्राण आधार, अनको पावना छूटन हारे। सिमृत शास्त्र वेद बीचारे, हर की भगत करहो मन लाए। मन बंचत नान फल पाए, संग न चाल स्थिर तना। तू क्या लुपटावै मूर्ख मना, सुत मीत कुटांबर बनता। इनते कहो तुम कवन सुनाथा, राज रंग माया विस्तार। इनते कहो कवन छुटकार, वस हस्ती रथ सवारी। झूठा डंप झूठ पा सारी, जिंदी तिस बुझै न बिगाना। नाम विसार नानक पछताना, गुर की मत तू ले हे आने। भगत बिना बौडू बे सियाने, हर की भगत करहो मान। मीत निर्मल होए तुम्हार।

कवन निकट कवन कहिए दूर। आपे आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व भूत आप बरतारा सर्व नैन आपे खनारा सगल।

दया प्रभु हरि नानक निभे खेप हमारी प्रभु की उस्तुत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत।